0: हर हर मन बुठा मन बुठा मन बुठा।
1: श्लोक महला पहला। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्का फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिया में दुखा फिक्के पाए, फिक्का मुर्गी आखिए पड़ाले सजाए। महला पहला।
0: अंदरों झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीरथ जे ना वह तरे नाही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिनले हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रूप है चुप भी कर जाहे परवाह ना है, किसे केरी बात सच्चे ना हा, दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे, दीवान एको कलम एका हवा तुम मेल, दारुले लेखा पीड़ छुटे, नानका जो तेल पौड़ी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख भेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गण जै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत आप नारायण कलातार जग मह परवर निरंकार आकार जोत जग मंडल करयाओ जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायाओ जह सिख है संग्रहयो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहण संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर हर गोबिंद यतुला दीन दुनी दा पातशाह पातशाह पातशाह डोला वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह निह चल चौर छत लिख कत है ना छूटी खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखस नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮੁਆ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ

के करेग अगै जाए हमें बिच जगत मुआ मर्द मरदा जाए जिचर बिच दम है तिचर नाच ताई के करेगा अगै जाए ज्ञानी होए सोच तन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथ कमावे सो मिले अगै पाए जाए महला तीजा तोर खसम का हुक्म पाया वेण सतगुर चित आना जाए सतगुर मिले अंतर रव रहिया सदा रहिया लिव लाए दम दम सदा समाल दान दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पाओ गया जीवन पदवी पाए

अपदन विनया अप परधन अप रूप दिखाल दा अप लायत अन्ना आपे मोनी वरतदान आपे कथा ज्ञान कौड़ा किसे न लगई सब नहीं पना उस तत वरन न सकिया साध साध कुर्बान उस तत वरन न सकिया साध साध कुर्बान खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा हौमै विच जगत मुआ मरदो मरदा जाए जिचर विच दम है चर ना चेतई के करेग अगै जाए।

रंग परंगे अनेक न जपन करत भाव, जी अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वस तेरा घर।

सवैयां पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुवरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ का गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया सबदो तगा बहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो के मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारू। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागा। घर सुभागा शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ।

जब लव नहीं भाग लीला रिओदा तब लव प्रमते फिरते बहुताय कल कोर समुद्र मै बूढ़त थे कब हूँ मेट है नहीं रे पछुताय तत् विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनाय जपयाओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयाओ पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी पुछ न सिख अरदास कर छे महलां तक दर्शन हारी आगमे अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी कल युग पीड़ी सोडियां

हर हर कृपा करहु प्रभ अपने, मुख देवहु हर निमुखते। हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम

हमें आव गुण पर ही एक गुण नाही। अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसमदी, नूर अर सह कुर सह चटियै। तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु। जिस पास बैठे आसो ही है, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु। जिस पास बैठे आसो ही है, सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जा कै वास है काम तेना। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावह मेरे मना। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जा कै वास है काम तेना। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावह मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उज्जल होई है। नित त्याई है हर पुरख निरंजना, रहाउ जह हर सिमरन भया, तह उपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना,
जान नानक कौ गोर एह मत दीनी जप हार भव जल तरना जह हर सिमरन पाया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हार भव जल तरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोड़ जन्म के दू गवायो, जो चाह सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाय, गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महथ, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया वाच धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल, जिने नाम त्याया गए मसकत काल।

0: सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा करम सच्चा निशान, सच्चे तुदाखे लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाऊ, वड्डी वड्याई जा सच ने आऊ, वड्डी वड्याई जा निचल थाऊ, वड्डी वड्याई जा ने अलाऊ, वड्डी वड्याई बुझे सपाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा पिया नानक कारण कथनी जाए, कीता करना सरवर जाए महला दूजा।
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्म करे विनाश, एक ना पाने कड ले, एक ना माया विच ने वास, ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास।
1: नानक गुरमुख जानी।

0: विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वे डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेक विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरा पाप माला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतों कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरते ता को ता

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला अंदर संदूक अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा करवास बेकार, जोगी सुन त्यामन जे ते अलख नाम करतार, सुख मूरत नाम निरंजन काया कायाकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे से सा गुणा सोप करे संसार, चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावेकार, एक होंदा खाए चले।

दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंड जेरज उत्पूजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए के संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे कत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो नानक तां का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जो को जाने पेयो नानक।

जागत पयो आनंद तान मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मान तब ही

कच्चो कंचन पे हो शब्द गुर सर्व ने सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरमुख

0: आख्या गिनका पड़ पुर तह काज श्री सतगुर सो परसन कल युग होए राखो दास पाठ की लाज सो धामा अपदा तेरा खिया गिनका पड़ पुर तह काज श्री सतगुर सो परसन कल युग होए राखो दास पाठ की लाज
1: झोलना गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जप नाम नव निद अप रसन अह निस रस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइया गुरमुख त्याइया अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर जानियो जो ता सब सुख इत उत तुम बंसो गुरु गुर

जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो। जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सिरजन हारा, जिन सिरजी तिन गोई। परवाना आया हुक्म पठाया, फेर न सकै कोई। आपे कर विखै सिर सिर लिखै, आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाणा। आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर न दूजा, नाम तेरा वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह, वाद वदंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म न बूझै, हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सिंजापै, साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण, रसन रसाया जियो।
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਿਸਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇਰੈ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ। ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਾ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸਾਚ ਚਵਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

बल दे वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवते जे सहाय, वार श्री भगवते जे के पातशाही दसवें, प्रथम भगवते समरका गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगद गौर ते अमरदास, रामदास होए सहाय, अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईया, जैस डिठ सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजा प्यारियां सोहां साहिबजादियां, चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां, जिन्ना नाम जपिया वंड सगया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे आरे आए, तो देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान पुरसा दान दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नू बगसो
हे नुमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दियोटा तान तान श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्सना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देख हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्सो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: रिथ रत त्रित रत जते का जोर गिरथ वाहो द्वाप रत पे का सत गिरथ वाहो काल जुग रथ अगन का कूड़ गै रथ वाहो महला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सब को सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा में सूर नाय लिए प्राच जाए नानक तो मुख अंतर पाए जुज में जोर छली चंद्राव कान कहिंजाद पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ नाव खुदाई लोपया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सचियार पड़े

0: सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तार तराजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सीस निवाए क्या थी है जार देखो सदे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विभुखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सा फोकट निचो करमं कहो नानक निचो त्यावै बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी।